0: रेडियो अरुण
1: अरुण
0: 97.6 MHz हरपल
1: हर
0: तपाईसँगै।
2: रेडियो अरुण टाइम चेक
3: It's 6 AM
4: अहिले बिहानको 6 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 8 AM
3: अहिले बिहानको 8 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 9 AM
3: अहिले बिहानको 9 बज्यो।

0: शंखुवा सभा
1: समीक्षा जोशी तुम्बे व गांव पालिका दुई मऊवा पांच थर
0: विस्कल चेवाली कांछा खाम्बारी नगर पालिका दुई शंखुवा सभा फिलहाल साउदी अरब
1: युनिसा ब्लोन तामांग दस खरांग

0: रेडियो अरुण
1: अरुण
0: 97.6 MHz
1: हर पल तपाईं सँगै।
2: रेडियो अरुण टाइम चेक
3: इट्स 5 PM
4: अहिले अपराह्नको 5 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 6 PM
3: अहिले साँझको 6 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक 7 PM
2: अहिले साँझको 7 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक, इट्स 8 PM।
2: अहिले रातको 8 बज्यो।

0: रेडियो अरुण
1: अरुण
0: 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
2: रेडियो अरुण टाइम चेक
3: इट्स 9 PM
4: अहिले रातको 9 बज्यो।